कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

से संवदन से अभिभूय नानी। किसी को पराजित कर करके जो प्राप्त करता है वो एक भाषा है, और किसी को जीत करके कोई प्राप्त करता वो एक भाषा है। राजनीति की भाषा है कि उसको हरा करके वो जीता है। धर्म की भाषा है उसको उसने जीत लिया, हराया नहीं, उसको उसने जीत लिया है। सुधर्मा स्वामी अपने अंतर के परमात्मा की तरफ जब देखते हैं कि वो जिनेश्वर हो गए, जिनेश्वर का मीनिंग है विनर, वो जीत गए, वो जीत गए, वो विजेता हो गए, और ऐसे विजेता हो गए कि सबको विजेता बनने का रास्ता खोल दिया। राजनीति में जो जीत जाता है वो अपने जीतने के गुण दूसरों को बताता नहीं है। कोई बिजनेसमैन अपने सफलता का गुण दूसरों को बताता नहीं है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को हम कहते हैं जिनानम जावयानम, वो जीते हैं।

जीतलो। श्रद्धाशील बनने का एक ही रास्ता है, अपने संशय को जीत लो। निराम गंदे होने का रास्ता एक ही है, अपने अंदर जो भी दुराचार है उसको जीत लो। स्थित होने का एक ही रास्ता है कि अपने अंदर में जो चंचलता के सूत्र है उनको जान लो, संवदंशी बन करके और उनको जीत लो। इसलिए अनुत्तर है संव जगंसी विजम। इसलिए पूरी दुनिया में वो एक श्रेष्ठतम विजेता है, अनुत्तर है, किसी की तुलना में नहीं। मैक्सिमम अपन किसको देते हैं कि उससे ये बेटर है, उससे ये बेटर है, उससे ये बेटर है। ऐसा नहीं है, तीर्थंकर ऐसे नहीं है, दूसरे के तुलना में बेटर नहीं है, वो बेटर ही है, वो बेस्ट ही है, द ग्रेट है। सूरज किसकी तुलना में बेटर है? रिलेटिव है क्या? नहीं, रिलेटेड नहीं है, वो अपने आप में ही ग्रेट है। तो अनुत्तर शब्द बार बार आएगा पृथ्वी में, और अनुत्तर का मीनिंग होता है कि वो किसी के अकॉर्डिंग ग्रेट नहीं है, वो अपने आप में ही ग्रेट है, किसी के तुलना में ग्रेट नहीं है। दगड़ा पेक्षा वीट मऊ नहीं है, वो मक्खन नहीं है। उसको आप नहीं कह सकते, मक्खन को नहीं कह सकते हैं कि दही पेक्षा मऊ है, बोले कि कोई नहीं ना, बस सच है ना। वासरात लंगड़ी का निशानी नहीं है, हम सब कैसे हैं? हाँ, इंक्लूडिंग मी, वासरात लंगड़ी का निशानी है ना। आंधों में काना राजा, वासरात लंगड़ी का निशानी, आंधों में काना राजा, वैसे वो नहीं है, वो अपने आप में ग्रेट है। और क्यों? से संवदंसी, पहला शब्द है संवदंसी, वो सबको देखते हैं, सब देखते हैं, इन्वॉल्व किसी में नहीं होते, इन्वॉल्व किसी में नहीं होते, देखते सब है। हम देखे और इन्वॉल्व हो, इज इट पॉसिबल? दिखे के इन्वॉल्व हुई अंश से संवदंसी, वो देखते सब कुछ। और इसलिए उन्होंने अज्ञान को जीत लिया, अज्ञान को जीत करके ज्ञानी हुए। अभी भूय का अर्थ होता है जीत कर करके, पराभूत शब्द नहीं प्रयोग किया, अभिभूत शब्द प्रयोग किया। अभिभूत ने उसको अभिभावित कर लिया। ये भाषा आप सीख लो लाइफ के लिए। पहले मेरी एक जिंदगी थी, मैं किसी को हराने के मजा लेता था, यस मेरी लाइफ थी वो, मेरा पास्ट वैसा ही था। अब हराना छोड़ दिया, और जब से मैंने हराना छोड़ दिया तब से लोगों ने मुझे हराना छोड़ दिया। ये गणित है, तुम दूसरों को हराने में लगे रहोगे तो दूसरे भी तुमको हराने में लगे रहेंगे, और लोगों को तुम जीतने में लगोगे तो लोग भी तुमको जीतने में लगेंगे। हराने का मीनिंग है कि उसको मैं हराने के लिए उत्सुक कर रहा हूं, और जीतने का मीनिंग है कि मैं उसको जीत रहा हूं। आपको लगता है कि बिना हराए जीत कैसे सकते हैं? आपके सामने समस्या ही की, सामने वाले को हराए बिना जीतना कैसे? ये भाषा यदि समझ में आ गई आपके, तो मुझे लगता है कि सुधर्मा स्वामी के भगवान महावीर आपके पास पहुंचना शुरू हो गए। चंडकोश को भगवान महावीर ने हराया, जीता। किसको कहते हैं हरा करके जीतना, और किसको कहते हैं जीत करके जीतना? जिस जीतने में सामने वाले को खुशी हो जाए, जीतने वाले को भी खुशी हो जाए, और जिसको जीता वो भी खुश हो जाए,
वो कहते

देके उसने जीत लिया, और जिसमें जीतने वाले को खुशी हो और जिसको जीता वो गुस्से में रहे, उसको कितना हरा करके जीता। आज ब्लिसफुल कपल का शिविर शुरू हो गया रामेश्वर, ब्लिसफुल कपल का शिविर शुरू हो गया, और मैंने उनको नौकर मंत्र सिखाया। आज कैसे सिखाया? धन आवे के, धन आवे के नौकर मंत्र। जिन जिन के बेटे और बहू आए होंगे ना शिविर में, वो कल देखना वो कैसे एक दूसरे के साथ नौकर मंत्र कैसे बोलते हैं। तुम्हारा नौकर मंत्र माला के साथ चलता है, और उनको मैंने नौकर मंत्र सिखाया एक दूसरे पर बोलने के लिए। हमने सामने बैठा करके कहा, बोलो नमो अरिहंतानम, कहीं नमो अरिहंतानम, बोले हमें ईसा त्रिया नमो अरिहंतानम। मैं क्या कमाल हो गई यार, थे नेताजी से बोल रहा हूँ, डांस मत लोग आवे ना, बोले नहीं मंच पर विराजमान एक्स वाई झेड को वंदना, हाथ पीछे बांधे हुए है, देखे सामने, क्योंकि सामने थे, सामने खड़े हैं बैठे हैं, तो नमो के तरह शेर किसो होंजे जन इसो झुकना चाहिए। आज नौकर मंत्र का आधा पाठ सिखाया उनको, कल आधा पाठ सिखाऊंगा, आधा सिखाया आज, पूरा नहीं सिखाया। धन नौकर मंत्र सिखाने कितना टाइम लगे, आवे हो महाराज साहब, अरे मैं के थन नहीं आवे तो मां साहब कई बोलो थे, पर मीठे भी कहीं नहीं बोले मैंने। उन्होंने सीख लिया और उनको मैंने कह दिया कि कम से कम ये तीन नौकर मंत्र थे दे जाना, एक साथ एक दूजार समाप्त करना है, मैं कर। और उनको मैंने कहा, पूछा मैंने उनको, थन किस लागे, अच्छा लागे। मैं कह सकल एक एक कपल ने साथ लेने आओ ना, के बोले लेने आवाना है। उन पर सौंपा था मैंने कहा कि कल का शिविर आज जहां वहां वहां होना है कि आनंद समोसर में होना है। तो मैंने कहा इतने आओगे तो यही लूंगा, तुम एक एक को लेकर के आओगे तो समोसर में लेंगे, नहीं बोले समोसर में लेंगे। मैंने कहा ठीक है, यह बात मैं थाने कैसे हो गई, यह बात मैं थाने कैसे कहोगे, कैसे नहीं बोल रहे थे, बोले तो भी बचा, नहीं बोले तो भी ठीक है, नहीं बोलो है ना। जितना किसको कहते हैं कि जिसको तुमने जीता है उसको तुम्हारे से अधिक आनंद की अनुभूति हो जाए, जिसको तुमने जीता है वो तुम्हारा दुश्मन न बनकर के भगत हो जाए, उसको जितना कहते हैं। जीतने के बाद सामने वाला दुश्मन बन गया तो तुमने अपने हारने का रास्ता खोल दिया, ये जीतने का रास्ता है। और कैसे हो सकता है, से संवेदनशील, उन्होंने ऑल डायमेंशन से देख लिया, सब देख लिया। अपन भक्त जितो दिखे उतो देखा, उतो भी नहीं देखा, उतो भी नहीं देखा, उतना भी नहीं सुना, पर जितना सुनाई देवे उतना भी नहीं सुना। विश्वेश्वर राय ट्रेन से सफर कर रहे थे और ट्रेन कर्नाटक या तमिलनाडु के पास वैसे जा रही थी, और वो किताब पढ़ रहे थे, और किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने किताब नीचे रख करके ट्रेन की चेन खींच ली, अब ट्रेन रुक गई। आइए सर, थोड़े बोले ट्रेन क्यों खींची, अरे चेन क्यों खींची, बोले आगे रेल पटरी टूटी हुई है। कहाँ पटरी, आगे, बोले तुम यहां बैठे हो तुमको कैसे पता चला, बोले पहले देख करके आओ, और आगे गए तो पता चला कि आगे रेल पटरी के सारे बोल्ट खुले पड़े। बोले हाउ यू, बोले रेल चल रही थी
और रेल की जो आवाज नहीं थी वो चेंज हो गई। जमी हुई पटरी पर रेल चले तो उसका आवाज, और आगे पटरी खुली हो तो उसका आवाज। इतना माइक्रो डिफरेंस जो देख सकता है वो देखता है। संवेदनशील, और संवेदनशील हुए इसलिए अभिभूय नानी हुए। इस शब्द को आपको पहुंचाने के लिए शिवाजी महाराज अफजल खान के मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अफजल खान को पहली बार देख रहे ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन अफजल खान को मिलने के पहले उन्हें अफजल खान को नक्शिकांत देखने आता था। उसका नेचर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी आदत क्या है, उसके पास कौन कौन है, सारा देख लिया था। और सारा देख लिया था इसलिए शिवाजी महाराज जीत गए थे। यदि उसको मिलने के पहले सारा देखा नहीं होता तो हालत क्या होती। से संवेदन से, इसको कहते संवेदन से होना है, सब देखना। और सब देखने के बाद जो ज्ञान होता है वो विजेता का ज्ञान होता है, वो विजित ज्ञान होता है, सक्सेस, विनर नॉलेज। विनर नॉलेज, हम विनर होना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, लेकिन नॉलेज हमारे पास विनिंग का नहीं है। और विनिंग का नॉलेज कब आएगा, जब सब देख पाएंगे। से संवदन से अभिभूय नानी निराम गंधे, ध्यान में रखना जितना बोल रहा हो वो अंदर में जो चल रहा है उसका 2% बोल रहा हूं। कितना परसेंट बोल रहा हूं, 2% बोल रहा हूं। इस अभिभूय शब्द पर कल 2% अंदर में यात्रा चल रही है, कल 2% इसलिए है। ये मत सोचना कि जितना बोल रहा हूं उतना ही सुधर्मा स्वामी के पास है, मेरे पास जितना उतना भी नहीं बोल पा रहा हूं। से संवदन से अभिभूय नानी निराम गंधे, कच्चा आम पक्का आम, कच्चा आम पक्का आम, कहरी किसी लागे, हेलो किसी लागे, खट्टी अनपके राम, क्यों बोला, कच्चे आम की गंध और पके हुए आम की गंध एक है नहीं, थके गंध किसी है, कच्चे की पक्की देख ले जाओ। निराम गंधे, जिसमें से कच्चापन निकल गया, कच्चेपन की गंध भी नहीं रही। अरे उरी गंध तक नहीं आवे, अपन बोला ना उरी बास तक नहीं आवे, उरी स्मेल तक नहीं आती, गंध भी नहीं मालूम पड़ी, वो किसो निकल गई हो मैंने उरी गंध नहीं आई। तो गंध ने अंदर में जो कच्चापन था वो कब निकल गया और कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल, चंडकोशी के अंदर का गुस्सा कब निकला, कैसे निकला, चंडकोशी को पता चला गया। चंडकोशी ने मालूम पड़ी कि मारो गुस्सो कटने गया, मालूम से नहीं पड़ी, अपनी जिंदगी कटने गई मालूम पड़ी, उसका गुस्सा निकल गया ना उसको पता नहीं चला, स्थूली भद्र के विकार निकल गए ना उसको पता नहीं चला, इंद्र भूत गौतम का अहंकार निकल गया और पता ही नहीं चला। निराम गंदे, ये सारी अपक्वता कच्चापन। बड़ी प्यारी सी कहानी है,
संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, गोरोबा कुमार, चोखोबा, सब सब सब सब साथ में बैठे हुए थे। और मुक्ता भाई बिल्कुल सबसे छोटी, मुक्ता भाई को लगा कि नामदेव का मटका जो है थोड़ा कच्चा है। अभी कच्चेपन का एहसास कैसे कराए इसको? तो मुक्ता भाई ने गोरोबा कुम्हार को आग्रह किया, बोले गोरोबा बापा तुम्हें कुम्हार आते ना, तुम्हें गाड़गे कैसे तपस्ता, तो मटके मटका कच्चा है कि पक्का है? बोले थपकी मारो। बोले आमचे मटके पाँव भर कैसे गड़े? अब निवृत्तिनाथ समझ गए कि ये मुक्ता भाई अपना खेल खेल रही है। अब वो गोरोबा कुम्हार उठे और निवृत्तिनाथ के तब पक्का है, बोले ज्ञानेश्वर को लगाए, बोले पक्का है। लगाते नामदेव के पास आए। नामदेव के जैसे नामदेव के पास आए तो नामदेव को है मैं कौन हूं, नहीं कौन, नहीं मेरी परीक्षा करेगा, अब करनी तो लगाई। और नामदेव को आए गुस्सा, बोले कच्चा घड़ा है। अगड़ा कैसा है वो कच्चा कहते नाम दे तो और उचका। बोले लोग इतना मेरा कीर्तन सुनते हैं, मैं ज्ञानेश्वर से भी उम्र में बड़ा हूं और ये मुझे कच्चा कहता है। फिर निवृत्तिनाथ ने उसको समझाया, बिना गुरु के घड़ा पकता नहीं है। क्या? बिना गुरु के घड़ा पकता नहीं है। और फिर उसको गुरु के खोज में भेज दिया और भेजे ऐसे के पास की जिंदगी में कभी जा नहीं सके, लेकिन गया। वो कहानी आगे, अपना घड़ा यदि देखने के लिए गए, आजा गोरोबा कुम्भार, पकड़ने का दूरों के सुखिया नहीं आजते हो, अपना घड़ा तो पकड़ेगा लखन को नहीं, अजून सुखी भी को नहीं हो गिल्लो छाजन। निराम गंधे धीमम ठी अब्बा, पेशेंस कैसे आते, धृतिमान कैसा होता, धीरज कैसे आएगा? आज बोलते ना आप लोग, हमारे साथ पेशेंस रह दिया किरा में, बहुमी के सास में, बाप में के बेटा में। कभी आपने बोले कि महाराज में पेशेंस नहीं रहा? कई बोल और हम पेशेंस नहीं रहा। ये पेशेंस आएंगे कैसे? और पेशेंस आने के लिए ये तीन बातों से गुजरना पड़ता है। सोवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे, अंदर का सारा कचरा कच्चापन, कच्चा है तो सड़ेगा, कच्चा है तो सड़ेगा, कच्चा खाओगे तो पेट बिगड़ेगा। इसलिए भगवान महावीर ने जैन साधु साध्वी के लिए नियम लगा दिया, कच्चो पानी पीनो नहीं, कच्चो खाओनो नहीं। तुम कच्चा खाओगे तो कच्चे ही रहोगे, जैसा खावे अन्न। अब कच्चा खाओगे तो मन कैसा होगा? पक्का, पक्का खाएंगे तो मन पक्का होगा। कच्चे पानी पीवो, तीर्थन करने का कच्चा पानी मत पी, प्रासुक जल पी, पक्का पी। और पक्का पियोगे आप, एक प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, एक महीने के लिए प्रयोग करिए, कच्चा खाना नहीं, कच्चा पीना नहीं, कच्चा पानी नहीं पीना, कच्चा है कुछ भी नहीं खाना है। और एक महीने में देखिए आपका मन, आपकी काया, आपके डाइजेशन, आपकी नींद
कैसे चेंज होती है, एक बार प्रयोग करके देखिए ना। प्रयोग करें क्या तैयार करते, पचखान नहीं दे रही बताने, लेकिन एक महीने का प्रयोग करके देखिए। कच्चा नहीं खाना, पका हुआ खाना, कच्चा पानी नहीं पीना। टेस्टिस ने आए मेरा साहब, लेकिन टेस्ट अंकल लाने बचे कई कई हुए जो सबको था ना मालूम है। निराम गंधे होंगे तब पेशेंस आएंगे, उसके बिना पेशेंस आते कच्चेपन में पेशेंस आ ही नहीं सकते। और पकने के बाद पेशेंस आने के लिए देर लाने ही नहीं पड़ते। धीमम ये परिणाम है, ये रिजल्ट है, लेकिन वो शुरुआत करिए। कच्चा पहले डाइट से शुरुआत करिए, फिर सोचने से शुरुआत करिए। कच्चो नहीं सोचना, पक्को सोचना। बात कच्ची नहीं करनी, पक्की बात करनी। कच्ची बात कहने के पक्की बात कहने के धनमाले में थे बोलते रहे ना, थारी बात पक्की है ना। पक्की मतलब नो चेंजेस, कच्चे मतलब अभी तो हमारे मारवाड़ के संत एक आपको चुपती हुई बात बोलते हैं। कौन सी बात बोलते हैं? पहले मकान की दीवारें कच्ची होती थी, रिश्ते पक्के होते थे। अभी दीवारा पक्की हो गई थे बोले वो, मैं तो बोली क्यों नहीं है ना। कितने साइक्लोन आते थे, रिश्ते नहीं टूटते थे। अब तो रिश्ता टूटने के लिए साइक्लोन की जरूरत ही नहीं है, रिश्ते के लोड से ही रिश्ते टूट रहे, रिश्ते के लोड से ही रिश्ते टूट रहे। इसलिए ब्लिसफुल कपल का शिविर लिया, इसलिए पेरेंटिंग का शिविर लेता हूं, इसलिए गर्भ संस्कार का शिविर है कि मां बाप कच्चे होने चाहिए पक्के होने चाहिए। अभी कच्चा से मां बाप बने, पक्का मां बाप है इसको नहीं। कच्चे मां बाप किसको कहते हैं, पक्के मां बाप किसको कहते हैं? पति पत्नी ये कच्चे मां बाप है। मां बाप बने तो पति पत्नी, आम पक गया तो कैरी रहेगी, प्रमोशन हो गया। मां बाप मतलब क्या? प्रमोशन। पहले अपॉइंटमेंट कहां थी? पति पत्नी, और बाद प्रमोशन हो गया, मां बाप बन गए। अब मां बाप बनने के बाद भी कच्चा चले गए तो बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चे कैसे होंगे? दोष किसका? कल ये चेन्नई वाले आए हुए, कल ऐसे बैठे थे बहुत देर तक, बात चलते चलते चली, आज के बच्चों पर गई, कैंसर पर बात पहुंची। 5 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गई, कैसे हो गई? मैंने कहा 5 साल के बच्चे को डायबिटीज हुई है तो जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। टेंशन लेकर के सोए, टेंशन में झगड़ा करते रहे, वही से उसका पेनक्रेस डिस्टर्ब कर दिया, जन्मने के पहले ही डिस्टर्ब कर दिया। अमृत ऋषि जी की दीक्षा के लिए पुणे से नगर आ रहा था, कुंडापुरी के पास था, और पाथड़ी का एक परिवार पुणे से लौट रहा था, मुझे देखा, उतरे, दर्शन करे, उनके गोद में बच्ची थी और बच्चे के आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? पट्टी आंखें माते मतलब कहते लगे हो शिला, क्या हुआ? बोले कैटरेक को ऑपरेशन किया। क्यों ऑपरेशन? मोतियाबिंद ऑपरेशन, गोद में है बच्ची,
मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ मर साहब। मैंने कहा रियर कैसे? बोले मर साहब जिस हॉस्पिटल में हम गए थे वो सारे बच्चों के किटर का ऑपरेशन का ही है, और सारे बच्चे हैं ऐसे। अब इस बच्चों की आंखें किसने बिगाड़ी? इसलिए आगमकार ने कहा है कि मां ने कैसे होना चाहिए, बाप ने कैसे होना चाहिए। उसके आधार पर गर्भ संस्कार का शिविर जब मैंने 1997 में शुरू किया तब कोई नहीं था गर्भ संस्कार का जैन धर्म में। शुरुआत में तो लोगों ने बहुत मेरे कपड़े फाड़े, सबने कपड़े फाड़े, कोई नहीं छोड़े, घर वाला ने नहीं छोड़े, बाहर वाला नहीं छोड़े। वो तो अच्छे है कि गुरुदेव ने चादर मजबूत पहनाई है तो लोगों के फाड़ने से फटती नहीं है। और आज देखो तो सभी उसकी कॉपी कर रहे हैं। मंदिर मांगे क्या, गुजराती क्या, साधु मार्गे क्या, सब जितने भी जैन में हैं और किसी की देखिए ईमानदारी कितनी है, और एक जना जिक्र नहीं करता है कि हमने वहां से लिया है। इतने ईमानदार लोग हैं और ये साधु कहलाते हैं। और आप स्वयं देख सकते हो 97 के तो बात छोड़ी है, 2006 ने 2020 के पहले 2015 के पहले कहीं पर भी तुम्हारे जैन समाज में अरम गर्भ संस्कार के अलावा कई गर्भ संस्कार की चर्चा चलती हो बता दीजिए। कॉपीकैट कार्यक्रम आगम से बने, इसलिए अरम पेरेंटिंग का शिविर, इसलिए गर्भ संस्कार शिविर। आज दोपहर में गर्भ संस्कार का प्लानिंग का शिविर है, और ये धीरे धीरे इसके पीछे बहुत लंबी यात्रा है। आपको सारी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक एक कार्यक्रम के पीछे 30-30 साल का रिसर्च है, और गर्भ संस्कार में तो आज भी रिसर्च कर रहा हूं। रोज नहीं उसमें ऐड होते, तुम कॉपी क्या करोगे मेरी? तुम जिसकी कॉपी करते मैं अगले साल नया मॉडल लाता हूं। बेंगलोर में ब्लिसफुल कपल का शिविर ले रहा था, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। अब उस ब्लिसफुल कपल शिविर के रिकॉर्डिंग कार्यालय को चाहिए थी एक साल के बाद, वो नहीं मिली हमारे पास नहीं, और वो रिकॉर्डिंग गलती से कहीं दूसरे एक परंपरा का जो उनकी वेबसाइट चलती है जो यूट्यूब उस पर चल गई, और वहां के हमारा एक श्रावक था उस परंपरा में, उसने कहा हमारा साहब आपका ब्लिसफुल कपल वहां चल रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने कहा कमाल हो गई भाई, मेरे पास नहीं है रिकॉर्डिंग, उनके पास है, क्या करेंगे, चलने तो कोई दिक्कत नहीं। ये कभी कभी उचकता है, ये उचकता है, कल भी उचका है, कल भी उचका, कल की जानकारी उसको मिली उचक गए। अरे मैंने कहा छोड़ ना यार, सिखाई जाना सिखा देना। तो आज दोपहर में वापस 2 से 5 प्री प्लानिंग का शिविर गर्भ संस्कार करें, उसके बाद 29-30 को पेरेंटिंग का शिविर। तो अभी भू या नानी पेशेंस आएंगे कैसे, इसकी बात कर रहा हूं आपके साथ। पेशेंस तभी आएंगे ना, पक्के मां बाप होंगे तो पक्के अम्मे, हमारा गुरु पक्का, हेलो हमारा गुरु कैसा है, पक्का है, मैं किस हूं, ये कोई बात बोला ना कैटर वाटर ने, मैं तो कहता हूं, और बाबू सेठ भी बोलते रहता है, फिर गुरुदेव ने आपको पक्का बनाया, बोलते रहते हो। अब जरा पक्को पर उन्हें झेलना पड़े, वो बोले यस, और मैं कहता हूं हाँ बनाया, पक्का गुरु पक्का ही बनाएगा।
गुरुदेव के गुरु भी पक्के थे, रतन ऋषि जी महाराज साहब, पक्का गुरु पक्का ही बनाएगा, तो ये पक्की की बात है। पेशेंस आएंगे कैसे, मां बाप में पेशेंस होंगे तो आगे पेशेंस आएंगे। ये तो थोड़ो कुछ कोई हो गया उच क्या, पहले एक बहन आई दूर से आई, अकेली आई, प्रेग्नेंट है और क्वेश्चन लेकर के आई, कई करो अभी ने क्या हो गया, बोले इरा बाप रा सा तेरे उनको मन को नहीं, थे जर एक दिन भी मारा कहने बैठे ना तो दिन भर किसी किसी के सावे हैं मालूम पड़ी लाता नहीं। क्या कहूं, बैठा उसके साथ बात करी, उसको समझा, मैंने कहा भी बाकी सब छोड़ दे, उसके साथ तुझे रहना नहीं रहना बाद में सोचेंगे, अभी इसके साथ रह ले, इसके पास इमोशन मत जान दे, नफरत के इमोशन इसके पास मत जान दे, तेरा स्ट्रगल इसके पास मत जान दे, जो आया है उसका वेलकम कर। और कह सकता हूं मैं आज भी, भले कॉपी कितनी ही करी होगी तो भी वेलकम की जो सीक्रेट साधना है वो आरंभ गर्भ संस्कार के पास है। और वेलकम जो कर पाते हैं वे सब कुछ कर लेते हैं, तो धीमम ठीक हम पाए और वो स्थित आत्मा हो गई, किसे पहले सवदंसी फिर अभिभूय नानी निराम गंधे और फिर पेशेंस आ गई, पेशेंस आ गए तो आदमी स्टेबल हो जाए, पेशेंस नहीं है चलते रहे भी। तुम्हारी काया तुम्हारे मन का दर्पण है, काया ये मन का दर्पण है, सीक्रेट ग्रंथों में गया है, गुरु ने शिष्य को तब जाकर के देखना जब शिष्य गहरी नींद में सोया है, और गहरी नींद में सोते समय उसकी बॉडी पोस्चर देख करके समझना कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है, ऐसा क्या बात आ गया नहीं। धीमम थी अब्बा स्थित आत्मा है,

अब भक्त अर्थ बताने आगे जाओ, दो गाथा दो लाइन बची है आपके पूरी। अनुत्तर है सब जगन से भी जाओ, सारे जगत में अनुत्तर गंथा अंदर के सारे कॉम्प्लेक्स निकल गए, गांठा निकल गई, गांठ कटे आ जावे तो कितनी तकलीफ हो गई, शरीर में कटे गांठ पड़ गई तो ट्यूमर हो गया तो कटे हाथ में छोटी सी भी गांठ लग जाए ना तो सबसे पहले किरी याद आवे, हर गांठ का कैंसर रेवे को नहीं लेकिन सबसे पहले वही आता है। वो सारी गांठे आत्मा में कहां है गांठे, शरीर में गांठ शरीर से नहीं आती। लिसन अगेन, मैं विषय टाइम हो रहा है इसलिए मैं समेट रहा हूं, जितनी भी गांठे मन में है आत्मा में है, तुम्हारे ज्ञान में गांठ, तुम्हारे श्रद्धा में गांठ, तुम्हारे भावनाओं में गांठ है, और ये भावना की गांठे ही शरीर में आती है। जिसके मन में वैरानुबंध की गांठ नहीं उसको कैंसर होने का सवाल नहीं। एक किडनी के प्रॉब्लम वहीं से आते हैं, रिसर्च कर चुका हूं मैं सिकंदराबाद में, मैक्सिमम सारे जो क्योंकि हमारे पास वो पुरुषाकार का ध्यान है, वो पुरुषाकार का ध्यान देख करके बता दिया ये डॉक्टर को, ये बोले मार सब सही है। इमोशन के प्रॉब्लम, रिलेशन के ब्रेकअप, रिलेशन के कॉम्प्लिकेशन, वहां से किडनी का काम शुरू होता है। और परमात्मा का तो बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, जिसके पास आर्त ध्यान रोध ध्यान है उसके पास सब बीमारियां हैं, और जिसके पास आर्त ध्यान रोध ध्यान नहीं है उसको बीमारी का कोई कारण ही नहीं है। गंथा आतीते अभय, भय निकल गए, अभय हो गए, अनाऊ अनाऊ अनाऊ मतलब समझते हो, आयुष्य नहीं रहा, आयुष्य नहीं रहा। अब आयुष्य नहीं रहा का मतलब क्या है, जन्म नहीं रहा, क्या नहीं रहा, आयुष्य है तो जन्म है और जन्म है तो मरण है, ये सारा निकल गया तो आयुष्य का बंद होता नहीं, आयुष्य का बंद होता नहीं तो जन्म होता नहीं, जन्म होता नहीं तो मरण होता नहीं। आज पितलिया परिवार, अभिनंदन पितलिया परिवार का कटे चेहरा दिखे कि जगह में तो खड़ा भी नहीं ले सके क्या अभिनंदन, और चेन्नई के हमारा हिरन परिवार, बरमेसा परिवार, अभिनंदन आप लोगों का। वीरथ का आपने लाभ लिया, पर वीरथ को लाभ भक्त एक दिन तो मत ले जाओ, अगला भी दिन ले जाओ, जका आठ है जका। ये भगवान महावीर की स्तुति हर घर में हर कंठ में पहुंचाने का कार्यक्रम है। आग्रह आप लोगों से कि अपने परमात्मा की भक्ति परिवार के हर सदस्य को सिखाओ। मैं बोलता नहीं हूं कि बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी, और दूर तक नहीं जाए इसलिए स्वयं को संभालता हूं, बोलने से कंट्रोल करता हूं। हम लोगों ने आपको तीर्थंकर की भक्ति सिखाई नहीं, अपने बच्चों को तीर्थंकर की भक्ति सिखाई नहीं, इसलिए पता नहीं कहां कहां जाकर के किस किस की भक्ति करके आ जाते हैं। यदि तीर्थंकर की भक्ति तुमने और हमने सिखाई होती बच्चों को तो बच्चे कभी और कहीं जाते हैं नहीं, ये अनुष्ठान है तीर्थंकर के भक्ति का, और इसके बाद अनुष्ठान रहेगा तीर्थंकर के वाणी के भक्ति का। जो दशहरे से शुरू होगा, 21 डेज के लिए शुरू होगा, 20 तारीख 20 अक्टूबर से शुरू होगा,
और उस अनुष्ठान के लिए एक छोटी सी योजना आपके सामने रख रहा हूं। अभी का कार्यक्रम चल रहा है सिंगल परिवार, अगला अनुष्ठान है 20 तारीख से जो अनुष्ठान शुरू हो रहा है वो परिवार का नहीं होगा, वो गोत्र का होगा। किसका? गोत्र का। और 21 गोत्र मुझे चाहिए नगर के, नगर के 21 गोत्र चाहिए, जो आपने सारे नगर के जितने भी उनके गोत्र के परिवार हैं उनकी मीटिंग मेरे साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबू से डबोरा है, उसको किसी दिन का लाभ लेना है तो वो न उसका बेटा आकर काम नहीं चलेगा। जितने बोरा हैं जिनके साथ उनकी बनती है नहीं बनती है वो सभी बोरा को लेकर के आना है मेरे साथ मीटिंग के लिए, उनको बताऊंगा मैं कि क्यों उतना ध्यान सत्र की आराधना करनी है, कैसे करनी है। 1-to-1 21 गोत्रों की मुझे मीटिंग लेनी है। मैं चाहता हूं कि 21 की जगह 42 गोत्र हो जाए, रोज के 2 गोत्र का परिवार हो जाए। नखरा समिति का है, नखरा प्रवीण ऋषि का नहीं है, प्रवीण ऋषि के नखरे हैं, नखरा उनका है, नखरा मैं करूं नखरा उनका है। मेरी भावना है कि आप एक बार तीर्थंकर के जिनेश्वरी की आराधना के ऑर्गेनाइजर बने, होस्ट बने। ज्ञानेश्वरी के सामूहिक पारायण होता है, गांव गांव में होता है, विशाल और विराट आयोजन होता है, गुरु ग्रंथ साहब का होता है। और देखोगे आप यहां पर 2 अक्टूबर को एक नजारा, जिनेश्वरी के पारायण करने वाले, जिनेश्वरी की आराधना करने वाले पूरे भारतवर्ष से जितने जिनेश्वरी के ग्रुप हैं वो गुरुदेव की पुण्य भूमि पर पहुंच रहे 2 अक्टूबर को। 1.5-2 हजार लोग रहेंगे वो, और एक स्वर में जिसे वो वीर थे गाएंगे झूम उठोगे तुम भी। ऐसी अनूठी जिनेश्वरी की आराधना का कार्यक्रम 20 तारीख से शुरू हो रहा है। गोत्र के आधार पर बात है, जो जो गोत्र परिवार निया समझ रहे हैं विलास भाव, बहुत सुन रहे होते मैं बोलू जरा थे सुनिया करो, पीछे बाद में क्यों मैं सुनिया को नहीं, मैं बोलू जरा थे परस्पर में बात करो पीछे और हम बात छूट जावे। गोत्र कटारिया परिवार नहीं चाहिए, नगर के सारे कटारिया चाहिए, बोरा सब चाहिए, लोड़ा सब चाहिए, चोड़िया सब चाहिए, सिंगली सब चाहिए, उनको होस्ट बनाना है। जिनेश्वरी के होस्ट बनिए, यजमान तो बहुत बन चुके तुम, एक बार तीर्थंकर परमात्मा के निर्वाण कल्याण के देशना के यजमान बनिए। जिनको भी लगता है कि हाँ मेरे गोत्र को यजमान बनाना है मेरे से बात करेंगे, नखरे के लिए उनसे बात करोगे, राशि के लिए बात उनसे करना, बाकी कैसे करना क्या करना क्यों करना है उसके लिए मैं आपके साथ 15 मिनट की मीटिंग करूंगा एक एक परिवार के साथ। और भावना है जैसे मैंने आपको पहले से कहा हुआ है कि गुरुदेव का जन्मोत्सव हो गया, परिषण पर हो गया, जन्मोत्सव का परिषण हो गया, क्षमापना का परिषण हो गया, आप परिषण है निर्वाण कल्याण का 21 डेज का। 21 डेज में मैं केवल 2 घंटे तुमको नजर आऊंगा, 7:30 बजे यहां आऊंगा, 7:25 को आऊंगा, 9:30 को यहां से जाऊंगा। लेकिन ध्यान में रखना, अभी से आदत लगा लीजिए, 21 दिन में किसी की वंदना लेता नहीं और किसी को वंदना करता नहीं। 21 दिन वंदना केवल तीर्थंकर महावीर की,
किसी की वंदना लेता नहीं और किसी को वंदना करता नहीं 21 days। इसलिए उन दिनों में ना तिखुत्व का पाठ होगा, ना कोई सूचना होगी, ना कोई भजन होगा, नौकार मंत्र से कार्यक्रम शुरू होगा, वर्धमान सरम पव जवे के साथ चला जाऊंगा। यह अनुष्ठान है और अनुष्ठान के लिए आपको आमंत्रण है।

0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।

यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल